चेहरे पर स्माइल नहीं आ रही है। तो फिर बाहर झांकी, ये देखिए मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि रिमझिम बारिश की बूंदों ने माहौल बदल दिया है। सावन है, इतना खूबसूरत मौसम है, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई तो फिर भाई सावन फीका पड़ जाएगा। मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सावन का लुत्फ उठाते रहिए। फिलहाल इस बरसात के मौसम में ना मुझे तो मन कर रहा है कि एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा दूं। तो ये रहा आपके लिए।

म्यूजिकल दिल्ली का सफर तो यहीं तक, लेकिन फिर से मुलाकात होगी ठीक 10:30 बजे। जुड़ेगा मेरे साथ जरूर। फिलहाल इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को, बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।

0: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस 2 सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाखोर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The center has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate or MDR on notified electronic payment modes. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.

0: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: The protest against the alleged irregularities in recruitment exams in Jharkhand entered its 14th day today in Ranchi. 6 demonstrators continued their hunger strike in the state capital Ranchi. The stalemate continues as the student leaders claimed that no invitation was received from the state government till yesterday evening. The ripples of the demonstration reached the Jharkhand Assembly yesterday, with opposition MLAs raising slogans on its premises on the first day of the monsoon session. US President Donald Trump has signed 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the US immigration system. Home Minister Amit Shah has offered salutations to poet laureate Gurudev Rabindranath Tagore on his death anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that Tagore gave voice to the soul of India and infused new consciousness into the freedom movement through his writings. The Home Minister underlined that Tagore's literature remains an inexhaustible source of inspiration for millions of countrymen even today. Indian Grandmaster R. Pragananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javakir Sindorov in the penultimate round. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की कार्य योजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56.70 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीता। और अश्मिता चालिहा ने कोरियाई मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
3: बैठक की सह अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुदेन्द्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्योक गोह ने की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। इस रोडमैप आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, संपर्क व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की योजना शामिल है। विश्व दर्पण के लिए सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
2: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। ये कार्यकारी आदेश जून में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ सप्ताह बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि अमरीका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से मौजूद माता पिता से जन्मे बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत स्वतः अमरीकी नागरिकता के हकदार हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। श्री ट्रंप का कहना है कि ईरान अब और अधिक समय तक टिक नहीं सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में ईरान में किए गए अपने इस महत्वपूर्ण अभियान का बचाव किया और तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अमरीका ईरान समझौते की संभावना पर श्री ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है और प्रगति हो रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को उनके प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 56 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: ये मार्च में कंपनी द्वारा हारे गए एक ऐतिहासिक मुकदमे का दूसरा चरण है। न्यायाधीश ब्रायन बिटशाइड ने फैसला सुनाया था कि कुल धनराशि में से 42 करोड़ अमरीकी डॉलर युवाओं के उपचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाएंगे, जबकि शेष राशि अगले 5 वर्षों में जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी। अभियोजकों ने न्यायाधीश से मेटा में मूलभूत बदलाव लागू करने का अनुरोध किया था जिनका उद्देश्य व्यस्तकारी सुविधाओं पर लगाम लगाना, आयु सत्यापन में सुधार करना और कड़ी निगरानी के माध्यम से बाल यौन शोषण को रोकना था। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: चीन में जातीय एकता कानून लागू किए जाने के विरोध में तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में शुरू की गई भूख हड़ताल आज 20वें दिन में प्रवेश कर गई। ये विरोध चीन के जातीय एकता कानून के खिलाफ है जो प्रदर्शनकारियों के अनुसार तिब्बतियों सहित अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और अधिकारों के लिए खतरा है। निर्वासित तिब्बती संसद के 3 सदस्यों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए धर्मशाला में भूख हड़ताल में भाग लिया। 19 जुलाई से तिब्बती युवा कांग्रेस तिब्बतियों की आवाज को बुलंद करने और तिब्बत के बारे में सच्चाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए एक वैश्विक विरोध अभियान चला रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4,053 तक पहुंच गई है जिसमें

0: 1,850 मौतें भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि कांगो में इबोला के प्रकोप से 330 बच्चों की मौत हो गई है। ब्राजील की फेडरल पुलिस ने 2024 में हुई विमान दुर्घटना के मामले में वोपास के 16 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए हैं। इस हादसे में विमान में सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई थी। जांचकर्ताओं ने एयरलाइन पर गड़बड़ी, लापरवाही और जरूरी काम न करने का आरोप लगाया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदोरोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। प्रज्ञानंदा ने 5 दिवसीय प्रतियोगिता में शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से जारी है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना के अंतर्गत 8 क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा को अपने प्लेटफॉर्मों द्वारा युवाओं को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए 56,70,00,000 अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीता और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. India-Singapore review progress of bilateral cooperation under 8 areas outlined by roadmap for India-Singapore comprehensive strategic partnership. U.S. President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. New Mexico court orders Meta to pay $567 million to address harm its platforms have caused to young people. Indian Grandmaster R. Pragyanand clinches Grand Chess Tour, St. Louis Rapid and Blitz title in United States. And in badminton, Ashmita Chaliha storms into the women's single semifinals of Korea Masters in Assen. India and Singapore have reviewed the progress of bilateral cooperation under the 8 areas outlined by the roadmap for India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership. The 19th round of the India-Singapore Foreign Office consultations was held in New Delhi yesterday. The meeting was co-chaired by Secretary E.S. Rudendra Tandon and Permanent Secretary Policy, Ministry of Foreign Affairs Singapore, Liu Goh. Both sides also exchanged views on regional and global developments and reaffirmed the importance of close coordination at international and regional fora, including ASEAN, in addressing shared challenges. External Affairs Ministry said in a statement that India-Singapore relations were elevated to a comprehensive strategic partnership during the visit of Prime Minister Narendra Modi to Singapore in September 2024. The roadmap for comprehensive strategic partnership was launched during the visit of Prime Minister of Singapore Lawrence Yong's visit to India in September last year. It covers cooperation in several areas including economic cooperation, skills development, digitalization, sustainability, connectivity and healthcare and medicine. U.S. President Donald Trump has signed 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system.
2: We had a very unfortunate decision.

0: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद, और इस कार्यक्रम के बाद आपकी मेरी फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?

0: दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने से सारे भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जीव जंतुओं को गर्मी से राहत मिल जाती है और हमारा मन भी इस मौसम में एक नई उमंग से भर जाता है।
1: काले काले बादल, ठंडी हवाएं और बारिश की बूंदों की आवाज सब मिलकर दिल को जो सुकून देती है उसका कोई जवाब नहीं है। बारिश की बूंदों से गीली मिट्टी की खुशबू तन मन को तृप्त कर देती है। सावन का मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि प्रकृति का नया रूप और मन की अपार शांति भी है।
0: बचपन की वो यादें जब हम अक्सर बारिश में भीगने के बहाने ढूंढा करते थे और बारिश में जो भीगने का मजा है उससे कभी दूर नहीं जा पाते थे। सावन का यह मौसम प्यार और मिलन का प्रतीक है, जहां हरियाली और ठंडी हवाएं रोमांस को जगाती हैं।
1: बारिश की बूंदें, हरियाली और ठंडी हवाएं मन में प्यार के एहसास को और गहरा कर देती हैं, क्योंकि सावन सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मन भी बदलता है।
0: देखो ना, आज मौसम कितना खुशगवार हो गया है। लगता है कि खत्म सबका इंतजार हो गया है। बारिश की बूंदें गिरी कुछ इस तरह से, लगा जैसे आसमां को जमीन से प्यार हो गया है।
2: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।
3: पवन करे शोर।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: सावन का महीना प्रेम और उमंग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब अपना प्रियतम ही अपने से दूर हो तो भला सावन की ठंडी फुहार भी जलते हुए तन और मन को कैसे शांत कर सकती है। रिमझिम फुहारे, ठंडी हवाएं और प्रकृति का हरा भरा रूप उस दूरी के एहसास को और गहरा कर देता है।
2: लेकिन भला कोई करे भी तो क्या, कभी कभी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि चाह कर भी कोई अपना किसी अपने के पास नहीं पहुंच पाता। और खास बात ये है कि ये उनके साथ कॉमन प्रॉब्लम है जिनके पति नौकरी में हो। अब उन्हें छुट्टी ना मिले तो वो क्या करें।
3: वैसे तो मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन सावन के मौसम में पति से दूर रहने का एहसास दिल को बहुत कचोटता है। बारिश की फुहारें, झूले और प्यार भरे मौसम में जब जीवन साथी पास ना हो तो विरह की पीड़ा और बढ़ जाती है।
2: सावन की पहली फुहार भी अब सूनी सी लगती है। जब तुम ही पास नहीं तो तेरे बिन ये सुहावनी रात भी वीरानी सी लगती है। उधर बादल बरस रहे हैं तो इधर ये आँख मेरी, काश उस हाल में होते तुम साथ मेरे।
3: इन ठंडी हवाओं में भी एक आग सी छिपी है, तुम पास नहीं हो सजना तो हर खुशी अधूरी सी लगती है।

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: मशहूर शायर निदा फाजले साहब ने लिखा है कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है और किस छत को भिगोना है। फाजले साहब की लिखी इस शायरी में सावन का जिक्र तो है ही, साथ ही ये शायरी टूटे हुए दिल का दर्द भी बयां करती है।
1: और वैसे भी कहते हैं कि बारिश की बूंदें उन्हीं पर गिरती हैं जो उन्हें महसूस करते हैं, बाकी लोग तो बस भीगते हैं। मतलब ये कि इस मौसम में इश्क करने वालों को अपने प्यार की याद कुछ इस कदर सताती है कि उनके दिल में छुपा प्यार और दर्द किसी न किसी बहाने बाहर आ ही जाता है।
2: सावन की हर बूंद में तेरी याद का मौसम छुपा है, ये सावन भी अधूरा है और मेरा प्यार भी अधूरा है। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई सुहानी याद आई, कुछ अपना जमाना याद आया, कुछ उनकी जवानी याद आई।
1: दिल संभाले नहीं संभलता, तड़प इतनी कि आज जान पे बनाई, गरजता बादल पिघलते अरमा और टूटे दिल की बरसात।
2: अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी

0: की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355387211 पर।
1: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
2: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
3: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे? मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
0: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
4: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
0: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
4: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
0: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
4: और अदिति को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हालांकि अब मेरे पास वक्त तो बहुत कम बचा है, लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ फरमाइशें जरूर शामिल कर लूं। हाँ, आपके सबके संदेशों को शामिल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, पर चलिए देखते हैं कि आज कौन से लकी श्रोता होते हैं जिनकी फरमाइशें मैं शामिल करती हूँ। 9868867853 ये है व्हाट्सएप नंबर, यानी 9868867853 जिस पर आप हमें फरमाइश भेज सकते हैं, और एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com ये ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वेल, निराश मत होइएगा, आज आपके नामों को शामिल तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिन गीतों को मैं शामिल करूंगी उनकी फरमाइश किसने भेजी है ये जरूर बता दूंगी। तो चलिए, सावन का मौसम है और ऐसे में मुझे तो सावन के गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, तो चलिए ये वाला गीत सुनते हैं। इसकी फरमाइश हमें भेजी है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत लता जी और रफी साहब की आवाज में।

और अब अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो है बहू बेगम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

बहुत सारे गीत तो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन चुके हैं, उन्हें बार बार क्या सुनना है ना, फिर किसी मौके पे सुना देंगे। फिलहाल एक और गीत सुनाती हूँ। ये गीत निगाहें फिल्म से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश ने हमें फरमाइश भेजी है इसकी, और विनोद कादियान, अंजू कादियान सोनीपत हरियाणा से लिख रहे हैं। ये रहा ये खूबसूरत गीत।

ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचा है आपके मैसेजेस के थ्रू, लेकिन मैं माफी चाहूंगी आज सबके मैसेजेस शामिल नहीं कर पा रही हूं, लेकिन इस प्यारे से गीत के साथ मैं फिलहाल अभी के लिए लेती हूं आपसे विदा। फिर मौका मिला तो जरूर मिलूंगी, आज नहीं तो किसी और सफर में, लेकिन फिलहाल एक गीत आप एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप सुनेंगे समाचार और फिर लाइव ले चलेंगे आपको राष्ट्रपति भवन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हुआ। इससे राज्य के जनजाति समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आंदोलनरत छात्रों ने कल शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे भी विद्यार्थी की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई

0: की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इससे पहले जून में प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Senate has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface, UPI, and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provisions that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे।
3: Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world so that the skill and craftsmanship of India's artisans receive global recognition. The protest against the alleged irregularities and recruitment exams in Jharkhand entered its 14th day today in Ranchi. 6 demonstrators continued the hunger strike in the state capital Ranchi. The stalemate continues as the student leaders claimed that no invitation was received from the state government

0: craftsmanship of India's handloom traditions.
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे. भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है. वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है. ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं. ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं. हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है. ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं. अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है. ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार. राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है. ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है. बुनाई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं. डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है. थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी.
0: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom.

0: तथा हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Komala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Biraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam, Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।

माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय

0: मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। द हैंडलूम सेक्टर, अ कस्टोडियन ऑफ आर सिविलाइजेशनल हेरिटेज, ग्रामीण रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं।
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेंद सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIF, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada

0: दादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे. थैंक यू. जय हिंद.
1: थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर. हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी. आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी.

हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल।

0: और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम। हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मसलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari, Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver for the Pattu Sadi, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing Shreni se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all ₹5 postal stamps which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation, and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aaiye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha hamare bunkaron dwara buna gaye pratyek dhaga vikshit Bharat ke sapne ko aur adhik sashakt kare. Dhanyawad, Jai Hind.
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
2: भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे. आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं. मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं. जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया. नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं. यह हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने

0: अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Award 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh. Aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है। अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं, संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे? तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। यह मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं।

0: अब छह राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून चौथा जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया। 35 लाख आए, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीभर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है, आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किया है, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा, AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70-80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

0: मेरा लक्ष्य है पच लखिया, भाई और बहन बनाना, दस लखिया बनाना। इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
2: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुनाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई नहीं बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त

0: माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजी आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कही छंती बुली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी नहीं, आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्रों वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे

0: सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरिफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सराहनीय और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवा एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम

कपास से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं, तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहस्यार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

நான்கு. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. आज मैं हूं आपके साथ मंजुला. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर. और दोस्तों, सावन की भीनी भीनी फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली से सजा प्रकृति का आंगन, ऐसा है मनभावन मौसम. और आज का दिन बहुत ही खास है. हम नमन करते हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिनकी लेखनी ने प्रेम, प्रकृति, मानवता और राष्ट्र भावना को शब्दों की अमर धरोहर दी. उनके विचार आज भी हमें संवेदनशील, सृजनशील और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं. और आज ही है राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस. यह दिन उन अनगिनत बुनकरों, कारीगरों को समर्पित है जिनके कुशल हाथ केवल कपड़े नहीं बुनते दोस्तों, बल्कि भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत के हर धागे को पिरोते हैं. हमारी साड़ियों की खूबसूरती, दुपट्टे की रंगत और हस्त निर्मित वस्त्रों की पहचान इन्हीं कलाकारों की मेहनत का परिणाम है. तो मुस्कुराइए, चाय की प्याली थामिए और हमारे साथ इस सुरीले सफर का आनंद लीजिए.

नहीं आए हैं, लेकिन आसमान में बहुत सारे बादल हैं। और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म विजय से। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपका मोबाइल, इंटरनेट, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी सब छिन जाए तो कैसा लगेगा। हमारी नई पीढ़ी आजादी को जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और मानना भी चाहिए, लेकिन शायद उन्हें यह भी जानना जरूरी है कि ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे लाखों लोगों ने अपने सपनों और जिंदगी देकर कमाया है। नई पीढ़ी को आजादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त

शायद उन्हें यह भी जानना जरूरी है कि ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे लाखों लोगों ने अपने सपनों और जिंदगी देकर कमाया है। नई पीढ़ी को आजादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त की छुट्टी या तिरंगा लहराना नहीं सिखाना है, उन्हें बताइए कि आजादी का मतलब है बिना डर अपनी बात कह पाना, अपने सपने चुन पाना, पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना, अपने देश को बेहतर बनाना। और ये सीख किताबों से कम घर से ज्यादा मिलती है। कभी परिवार के साथ किसी शहीद स्मारक जाइए, दादा दादी या नाना नानी उनके समय की कहानियां सुनिए, देशभक्ति पर बनी फिल्में साथ बैठकर देखिए, और सबसे जरूरी अपने बच्चों को सिर्फ देश से प्यार करना नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी सिखाइए, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने वालों की नहीं होती है दोस्तों। ईमानदारी से काम करने वाला हर नागरिक, नियमों का पालन करने वाला हर व्यक्ति और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को निभाने वाला हर इंसान देश को मजबूत बनाता है। याद रखिए, जिस पीढ़ी को आजादी की कीमत पता होती है वही उसकी सबसे अच्छी रखवाली भी करती है। तो चलो युवा शक्ति इस आजादी को सिर्फ उत्सव नहीं संकल्प बनाए, अपने कर्मों से अपने विचारों से भारत का भविष्य सजाएं। और हाँ, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। आज हैंडलूम डे है तो हमारा सवाल भी इसी से रिलेटेड है, कौन से हाथ के बने हुए कपड़े पहनना आपको सबसे अच्छा लगता है, चुनरी, दुपट्टा, साड़ी या कुर्ता या कोई भी ट्रेडिशनल कपड़ा, हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म थी बहारों के सपने। और दोस्तों, सावन की फुहारें मन को जितने सुकून देती है उतनी ही हमारी त्वचा और बालों की परीक्षा भी लेती है। इस मौसम में नमी बढ़ने वाले जो उससे रीजन होता है कि त्वचा चिपचिपी हो जाती है, मुहासे, फंगल इन्फेक्शन की आशंका बढ़ जाती है। वहीं हमारे स्कैल्प में रूसी, खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं भी आम हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसका असर त्वचा और बालों पर भी दिखाई देता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। चेहरे को दिन में दो बार साफ करें, लेकिन बार बार नहीं। बारिश के मौसम में भी बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, क्योंकि बादलों के पीछे जो छिपी हुई सूर्य की किरणें होती है वो भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप घर पर एक आसान सा आयुर्वेदिक फेस पैक बनाना चाहें तो एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसमें आधा आधा चम्मच चंदन और नीम पाउडर मिलाइए। इसमें गुड़हल के फूल का जो पानी होता है वो ठंडा करके उसमें मिला दीजिए, या फिर आप ग्रीन टी भी मिला सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। इसे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर धो लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको कम करने, त्वचा को ठंडक देने और मुहासों की समस्या में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं बालों की। बारिश में अगर बाल भींग जाएं तो उन्हें देर तक गीला ना रहने दें। सप्ताह में एक या दो बार गुनगुने भृंगराज, ब्राह्मणी या आंवला युक्त तेल से हल्की सी मालिश करें और एक बेहतरीन आयुर्वेदिक हेयर पैक भी आजमाइए। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1-1 चम्मच नीम पाउडर और करी पत्ते का पाउडर मिलाइए। इसमें ठंडी ग्रीन टी डालकर पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसे बालों की जड़ों में लगभग 20 मिनट तक लगाकर धो लीजिए। इससे स्कैल्प की अतिरिक्त चिकनाई कम होगी, रूसी कम होंगे, बालों को ताजगी देने में मदद मिलती है। और दोस्तों, सिर्फ बाहरी देखभाल ही नहीं, इस मौसम में हल्का, ताजा और गर्म खाना खाएं। हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे मसाले पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में सहायक माने जाते हैं। साथ ही गीले कपड़े या गीले जूते अधिक देर तक ना पहने, क्योंकि यही फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। और हाँ, कोई भी नया फेस पैक या हेयर पैक लगाने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर कर लें। याद रखिए, आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि ऋतु के अनुसार दिनचर्या, मौसम के साथ अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके आप पूरे सावन अपनी त्वचा को दमकता और बालों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म प्यासा सावन से। और दोस्तों, सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। रिमझिम फुहारे, मिट्टी की सोंधी महक, झूलों की रौनक और लोक गीतों की मधुर धुन, यह मौसम केवल वर्षा का नहीं बल्कि हमारी परंपराओं और लोक संस्कृति का भी उत्सव है। इन्हीं सुंदर परंपराओं में से एक है मिथिला का बहुत ही प्राचीन और भावनाओं से भरा लोक पर्व मधुश्रावणी। मधुश्रावणी केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि नव विवाहित बेटियों के नए जीवन के लिए आशीर्वाद, विश्वास और प्रेम का उत्सव है। विवाह के बाद पहले श्रावण मास में नव विवाहित महिलाएं इस पर्व को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी से आरंभ होकर लगभग 15 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव नव दंपति के सुखी, समृद्ध और दीर्घ वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, इस पर्व की सबसे सुंदर बात यह है कि यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार को स्नेह के एक धागे में पिरो देता है। मायके और ससुराल के बीच प्रेम, अपनापन और परंपराओं का जो सेतु बनता है वही जो है मधुश्रावणी की सबसे बड़ी पहचान है। इस दौरान मिथिला के घरों में लोक गीत गूंजते हैं, पारंपरिक व्यंजन बनते हैं और नई बहू को परिवार के रीति रिवाजों से परिचित कराया जाता है। मधुश्रावणी की एक विशेष परंपरा है नाग नागिन अर्थात विषहरा और विषहरी की पूजा। मिथिला की लोक मान्यता के अनुसार नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक और जीवन के संरक्षक है। यह पूजा हमें संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध

सम्मान और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति का मूल भाव है, प्रकृति की रक्षा तभी जीवन की रक्षा। और मधुर श्रावणी हमें यह भी सिखाती है कि भारतीय लोक पर्व केवल रीति रिवाज नहीं होते, बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। परिवार का साथ, प्रकृति के प्रति सम्मान, रिश्तों की मधुरता और नए जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन की सुहानी बेला में यदि कभी मिथिला की धरती पर मधुर श्रावणी के लोकगीत सुनने का अवसर मिले तो दोस्तों महसूस होगा कि ये पर्व केवल मनाया नहीं जाता, बल्कि पूरे मन से जिया जाता है। इसी मंगल कामना के साथ कि सावन का यह पावन महीना आपके जीवन में भी प्रेम, विश्वास, हरियाली और खुशियों की फुहार लेकर आए।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म उसने कहा था। और दोस्तों, जरा सा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके घर में भी कोई पुराना संदूक है जिसमें दादी की साड़ी, नाना जी का चश्मा, माँ की शादी के एल्बम या पिताजी के पुराने खत आज भी संभाल कर रखे हैं। क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का इतिहास है, हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। आज मोबाइल में हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन अफसोस उनमें से कितनी तस्वीरें हम 10 साल बाद ढूंढ पाएंगे और कितनी कहानियां उनके साथ जिंदा रहेंगी। पहले दादा दादी या नाना नानी जो भी होते उनके रात को बच्चों को परिवार को जो भी होते रात बच्चे घर में उनको कहानियां सुनाती थी कि कैसे दादाजी ने संघर्ष करके घर बनाया, कैसे बाढ़ या सूखे के दिनों में पूरा परिवार एकजुट रहा, कैसे छोटी सी खुशियां भी त्योहार बन जाती थी। और वही कहानियां बच्चों को साहस, संस्कार और परिवार का महत्व सिखाती थी। तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें, अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी बातें रिकॉर्ड कीजिए, पुरानी तस्वीरों के पीछे तारीख और उनसे जुड़ी यादें लिखिए, परिवार छोटा सा वंश वृक्ष बनाइए, बच्चों को बताइए कि उनके नाम किसके नाम पर रखे गए, उनके पूर्वज कहां से आए और किन मूल्यों से इस परिवार को कहां से कहां तक पहुंचाया। यकीन मानिए, आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ी विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपने संस्कार, अपने परिवार की कहानी मिलेगी। और हाँ, आज घर पहुंचकर एक काम जरूर कीजिएगा, किसी पुराने एल्बम को निकालिए, पूरा परिवार साथ बैठकर देखिए और हर तस्वीर के पीछे कहानी सुनिए। देखिएगा, तस्वीरों से ज्यादा मुस्कुराहट खिलेंगी। और अभी कुछ मेल्स भी आए हैं। खुशबू कश्यप लिखती हैं कि की बूस्टिंग भारत का जो भी होता है, भारत देश के बारे में उसकी तारीफ करना और मुझे कॉटन कुर्ती पहनना अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी कहते हैं सूती के खादी और खादी के कुर्ता पजामा उनको बहुत पसंद है। सुदर्शन मुखी जी ने भी कार्यक्रम की तारीफ की है और बहुत सारी बधाई दी है। कामानी लिखती है कि उन्हें रंग बिरंगे दुपट्टे और भारतीय वस्त्र पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप सबका मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हम सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन को फिल्म क्या कहना। और बारिश में आपको एक ऐसे ट्रेन की जर्नी करनी चाहिए जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बारिश यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पहाड़ों पर तैरते बादल, हरियाली का चादर और सफर का ही बिल्कुल नया एहसास। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी रेल यात्रा भी है जहां ऐसा लगता है जैसे ट्रेन बादलों और घने जंगलों को चीरते हुए किसी छिपी हुई जन्नत की ओर बढ़ रही हो, तो जी हां, बात कर रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की। यह रेलगाड़ी उत्तर पूर्व भारत के उन मनमोहक इलाकों से होकर गुजरती है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। और ये रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के सियालदह से चलकर त्रिपुरा के सबरूम तक पहुंचती है। लगभग 1600 किलोमीटर का ये सफर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और त्रिपुरा की धरती को जोड़ते हुए उत्तर पूर्व भारत की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से आपका परिचय कराता है। लेकिन दोस्तों, असली जादू शुरू होता है मानसून में। जैसे जैसे ट्रेन त्रिपुरा की लॉन्ग थराई पहाड़ियों की ओर बढ़ती है, खिड़की से बाहर का हर दृश्य किसी चलचित्र का जीवंत दृश्य बन जाता है। घने बांस के जंगल, बादलों में खोई हुई पहाड़ियां, छोटी छोटी जलधाराएं और एक के बाद एक आते हुए सुरंगें। कई बार तो ऐसा लगता है मानो ट्रेन बादलों को चीरती हुई किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रही हो।

अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को फिल्म दोस्त में, और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह समय है कलाकार बेमिसाल का और साथ में है आपकी दोस्त रजनी। आज एक ऐसे गायक का जन्मदिन है जिनके कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर उन्होंने इतना नाम कमाया कि पद्मश्री, राष्ट्रीय पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बात हो रही है कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज देने वाले बहुमुखी गायक सुरेश वाडेकर की। शो की शुरुआत करते हैं प्रेम रोग के एक लोकप्रिय गीत के साथ, और उनके साथ जो दूसरी आवाज है वो है लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सात अगस्त 1955 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में सुरेश वाडेकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। लेकिन उनका परिवार कुछ समय बाद ही गिरगांव शिफ्ट हो गया। उनके पिता ईश्वर वाडेकर कपड़ा मिल में काम करते थे और उनकी मां मिल श्रमिकों के लिए खाना बनाती थी। जब सुरेश वाडेकर कुछ बड़े हुए तो उनका झुकाव कुश्ती की तरफ हो गया। वो अखाड़े में कुश्ती करने के अलावा अपने पिता के साथ अक्सर जिम भी जाया करते थे। उनके पिता खुद भी एक पहलवान थे, तो फिर किस तरह पहलवानी करने वाले सुरेश वाडेकर जाने माने गायक बन गए, बताएंगे आपको गमन फिल्म में इस गीत के साथ, जिसके लिए उनको काफी सराहना मिली थी और बहुत ही खूब

बात है 1968 की, जब सुरेश वाडेकर 13 बरस के थे। तब संगीत शिक्षक जियालाल वसंत ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रयाग संगीत समिति द्वारा दिए जाने वाले प्रभाकर सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने कोशिश की सुरेश वाडेकर जी ने, और तब ये जो सर्टिफिकेट था ये बीएड के समकक्ष माना जाता था। वाडेकर ने सफलतापूर्वक अपना प्रभाकर पूरा किया और मुंबई के एक स्कूल में संगीत शिक्षक के रूप में अपॉइंट हो गए। 1976 में उन्होंने सुर श्रृंगार प्रतियोगिता में भाग लिया और ये प्रतियोगिता जीत ली। जूरी में जयदेव और रविन्द्र जैन जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शामिल थे। रविन्द्र जैन उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म पहेली में सभी गीतों में जो मेल प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्हें गाने का मौका दिया। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी और

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: एफएम गोल्ड पर जारी है कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडेकर की। लता मंगेशकर ने जब सुरेश वाडेकर की आवाज सुनी तो वो उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने कई संगीतकारों को उनका नाम रिकमेंड किया और कई गीतों में ये जोड़ी यानी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर साथ में सुनाई दी, जैसे कि क्रोधी, हम पांच, प्यासा सावन और खासकर आरके बैनर की कई फिल्मों में इन्होंने साथ में गीत गाए और बहुत लोकप्रिय गीत गाए, जैसे कि प्रेम रोग, मेहंदी, प्रेम ग्रंथ और हिना

से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। ये पुरस्कार उन्होंने 11 बार अपने नाम किया है। फिलहाल अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म चांदनी से।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सुरेश वाडेकर ने हिंदी के अलावा मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोंकणी और भोजपुरी में भी गीत रिकॉर्ड किए। 2010 में मराठी फिल्म मी सिंधुताई सपकाल के एक गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के राष्ट्रीय पुरस्कार

2004 में सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्होंने महाराष्ट्र प्राइड अवार्ड और 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड अपने नाम किया। साल 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के लिए सुरेश वाडेकर के नाम की घोषणा की गई। अगला गीत फिल्म उत्सव थे आप तक पहुंच रहा है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: आकाशवाणी FM गोल्ड पर जारी है कलाकार बेमिसाल। गायन के अलावा अनेक क्षेत्रों में भी सुरेश वाडेकर का योगदान रहा, जैसे उन्होंने tanman.com नाम से एक फिल्म का निर्माण किया। वो भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कई गायन प्रतियोगिताओं में जूरी के रूप में भी दिखाई दिए। वाडेकर जी मुंबई में आचार्य जियालाल वसंत संगीत निकेतन के निदेशक हैं और उनका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक संगीत प्रशिक्षण संस्थान भी है। साथ ही उन्होंने एक ऑनलाइन संगीत विद्यालय भी शुरू किया है जो विद्यार्थियों को संगीत की बारीकियां सिखाता है।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 7 तारीख व दिन है शुक्रवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत हुमो, मुनपा मदघोषक श्री लोपसंग नरवू, तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गियारे और शिखा डिका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अच्युत बर्मन और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूँ आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छोटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से नुप्रसारित करेंगे।

0: मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक

0: संकल्प लेता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलत

0: गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमापार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: वे आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और हिंदी भक्ति गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गांधी स्मृति से। इसमें आज आप सुन सकेंगे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार।

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति. देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी. तब सर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास. लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन.
2: कवि ने कहा है और मैंने तो कहीं यहां पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत को बाहर जो हुआ है वो तो बगीचा के लिए कहा है.

तो यहाँ भी पाकिस्तान में तो है, ऐसे ही हम है, पाकिस्तान में हमारे भाई है, हम उनके भाई है, वो हमारे भाई है, हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो है, रह जाए उसे रहा तो क्या, न रहा तो क्या, हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना, दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी, अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे उससे उसको क्या, आपको क्या पड़ी, मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान के देहात है तो उस 60,000 देहात की वो हुकूमत बनी है समय, उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है, उसको बड़ा अच्छा है, उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा, सहज होगा, और तब कुछ वो देहातों का काम तो देने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से, ऐसी वो खूबसूरत चीज है, तो मुझको तो कहते कि दे भी घोष में पी लेता, और कोई तो कहे कि तो पीछा बिल्कुल आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का क्यों आशा रखता है, लेकिन मैं क्या करूं, बना हूं इसे, और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है, पढ़ता नहीं था, ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ, आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ, मैं अखबारों को भी पढ़ता जाता नहीं था, पढ़ता नहीं था, अंग्रेजी उसको कहा इतना आता था, अंग्रेजी बड़ी मुसीबत थोड़ा पड़ता था, और ऐसा गुजराती भद्दा जान लेता था, वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सके, उनको दिखाई का कैसे पड़ेगा, ऐसा अनजान आदमी, तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में राजकोट में नहीं काठियावाड़ में नहीं सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बनकर रहे, और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं, ये मेरा ख्वाब, तो अगर लोग उसको सुनाते हैं सब जगह से ताड़ लेते हैं तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ शायद वो ख्वाब स्वराज तो आया उनको नहीं कम आए उसको मैं स्वराज मानता नहीं हूँ, लेकिन इसी जंग में जो उस वक्त एक जवानी है और जवानी भी सब होती थी उसमें ये ख्वाब मैंने देखा, और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा, और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़के है ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा, अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया, हिंदू मुसलमान कोई आपस में कोई लड़ते फिरते नहीं है, और इस तरह से रहते हैं, हाँ आप लोग सब मदद करें, और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने, मैं भी आप क्या सुनना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है, तो बात तो सच्ची वो कहता है बुरा मूर्ख है उससे क्या हुआ, तो उसकी बात है ऐसा करो, मुसलमान मान ले, हिंदू मान ले, सिख मान ले, पारसी मान ले, ईसाई मान ले, और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे, हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने, तो सब धर्म एक साथ चलते हैं, एक किसी कोई देखेगा नहीं तो मुसलमान है तो पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा, इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा, और आप नाचेंगे नचा नहीं करता, वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा बना देगा, और इसी दुनिया का बन गई है जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता रहता है, और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहीं कि हमको किसी से नहीं डरते, एक ईश्वर पड़ा है वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और ईशाकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, उसे किसी से नहीं डरते हैं, अरे लेकिन ये पहाड़ जैसा पठान है सीख है उसे नहीं डरते हैं, मैं तो डर जाता हूँ, तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ, लड़के लड़कियाँ अगर डरते हैं ईश्वर से ही दूसरे को तो कह सकते हैं, ऐसा मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार कार्यक्रम गांधी स्मृति में। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। आप सुन रहे कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत।

0: की वाणी यही तो बताए, नाम ही तो राम तक पहुँचाए।
1: वेदों की वाणी यही तो बताए, नाम ही तो राम तक पहुँचाए।
0: पर ऐसा भाग तब बन पाए,
1: पर ऐसा भाग तब बन पाए
0: जब तू हृदय की वाणी से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे संगम लिंगी और ओतोगी मयूली की आवाज में चंद इदो मिशमी आधुनिक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगम लिंगी और ओतोगी म्यूली की आवाज में चंद मीदू मिशमी आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग की 11वीं कक्षा की छात्रा चिरिंग छुट्टन से एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर चंद शब्द।

राशिद लेख आकाशवाणी तवंग के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगतेंग के 11वीं कक्षा की छात्रा मैं श्रिंग चौटन और मैं आकाशवाणी तवंग को धन्यवाद करती हूं कि मुझे कार्यक्रम मेरी बात के तहत अपना विचार साझा करने का सुनहरा अवसर दिया। तो मैं आज एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एकल उपयोग प्लास्टिक क्या होता है।

0: स्ट्रो और खाने की पैकिंग। आज प्लास्टिक का उपयोग हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यह सस्ता और सुविधाजनक तो है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, यह वर्षों तक मिट्टी, नदियों और जंगलों में पड़ा रहता है। इससे भूमि की उर्वरता कम होती है, जल स्रोत प्रदूषित होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। सबसे अधिक नुकसान हमारे पशु पक्षियों और जल जीवों को होता है। कई बार गाय, कुत्ते और अन्य जानवर भोजन की तलाश में प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह जानवर, पर्यावरण और हम मनुष्य सभी को यह प्रभावित करता है, इसीलिए यह सबकी समस्या है। प्रिय साथियों, इस समस्या का समाधान हमारे अपने हाथों में है। यदि हम छोटे छोटे अच्छी आदतें बनाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें बाजार जाते समय कपड़ा या जूट का थैला साथ ले जाना चाहिए। जहां तक संभव हो स्टील या तांबे की बोतलों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कप, प्लेट और चम्मच की जगह स्टील, कांच या अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे करने से रोकना चाहिए। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने परिवार, मित्रों और पड़ोस के लोगों को एकल उपयोग प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बता सकते हैं। यदि हम विद्यार्थी एक छोटा सा प्रयास करें तो पूरा समाज बदल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि धरती हमारी है, इसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज हम सभी संकल्प लें कि जहां तक संभव होगा हम एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग की 11वीं कक्षा की छात्रा चिरिंग छुटन से एक एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे नीति मोहन की आवाज में, फिल्म जब तक है जान से। शब्द रचना है गुलजार के, संगीत है AR रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म अंग्रेजी मीडियम से गीत तनिष्का सांघवी और सचिन जिगर की आवाज में गीतकार थे जिगर सरैया व संगीत था सचिन जिगर का। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कौसर मुनीर द्वारा शब्दबद्ध फिल्म डियर जिंदगी से। जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म सत्यमेव जयते से आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रोचक कोहली ने।

अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट से गीत अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीत करते अमिताभ भट्टाचार्य व संगीता शंकर एहसान और लॉय का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म ये जवानी है दीवानी से बेनी दयाल और शेफाली अलवार्स की आवाज में। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ से गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में गीत कर थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीता अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह और श्रेय घोषाल की आवाज में फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से। शब्द रचना है कुमार और अहमद अनीस के व संगीत है शारिब तोशी और जवाद अहमद का।

अभी आपने सुना फिल्म केसरी से गीत। अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में गीतकार व इस गीत को संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्द फिल्म लव आजकल से। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

की आवाज में गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीता प्रीतम का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्द फिल्म फैनी खान से। सुनीति चौहान और दिव्या कुमार की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

फिल्म फैनी खान किसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:27 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे

श्रोताओं, आप सुन रहे कलाकार उस्ताद अमजद अली खान से सरोद हुआ दन। इसके साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पेमेंट में देरी और विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट संशोधन विधेयक पारित किया। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नए सांसदों से मुलाकात की, संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कई पानी और जिले में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्साप द्वारा ईस्ट सियांग जिले में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के समर्थन के लिए जिला प्रशासन को 3.16 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। भारत और चीन ने लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हालात पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और बेल्ट्स खिताब जीता। और आसाम में हो रही कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालीहान महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। संसद में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने यह बिल सोमवार को ही पास कर दिया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिल के पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की और विरोध कर रहे सदस्यों से सदन को चलाने देने की अपील की। उन्होंने हंगामा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह का विरोध देश की लोकतांत्रिक

0: व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमेशा सत्र के दौरान संसद आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी और कहा कि सदन अब सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू किया जाएगा। इससे पहले जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक करो या मरो के आह्वान को याद करते हुए श्री बिरला ने इस आंदोलन को राष्ट्र एकता, साहस, सच्चाई और अहिंसा का एक स्थायी प्रतीक बताया। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई में व्यवधान न डालने का अनुरोध किया।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: नीम मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगित होने के बाद जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कवच और सिग्नलिंग सिस्टम लगाने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए देने की कोशिश की, लेकिन अपना जवाब पूरा नहीं कर सके। हंगामा जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी और अब सदन सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर उन विभिन्न सांसदों से मुलाकात की जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। इनमें एनसीपीआई के और शिवसेना के सांसद शामिल है। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागथन बागमारे ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार होने वाले व्यवधानों के कारण नए चुने गए और प्रतिभाशाली सांसद सदन में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के पोसा और निपको कॉलोनी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से हुई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गत 24 जून को आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय निवासियों और आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं और चिंताओं पर विचार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल कराने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, अन्य मंत्रियों, विधायकों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आपदा की स्थिति का आकलन कर सभी संबंधित विभागों को राहत, पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आपदा के बाद उत्पन्न होने वाले आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। इंडिजिनस ट्रेड एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्साप द्वारा ईस्ट सियांग जिले में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के समर्थन के लिए जिला प्रशासन को 3.16 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान की है। इस संबंध में चेक औपचारिक रूप से ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी को सौंपा गया। सहायता राशि प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने इप्साप के इस मानवीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा समुदाय के कल्याण के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के सामूहिक प्रयास राहत कार्यों को मजबूत बनाते हैं और आपदा के बाद अपना जीवन दोबारा बसाने का प्रयास कर रहे परिवारों को सार्थक सहायता भी प्रदान करती है। भारत चीन सीमा पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 36वीं बैठक के दौरान भारत और चीन ने खुलकर चर्चा की और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पेश करते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने

0: बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में साल 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। हथकरघा बुनकरों को उनकी कारीगरी, इनोवेशन और भारत की हथकरघा परंपराओं को बचाने में उनके योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल थे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविधता हथकरघा बुनाई परंपराओं का जश्न मनाने के लिए 4 यादगार डाक टिकट भी जारी किए गए। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा सेक्टर न केवल आजीविका का साधन है बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा है कि हजारों सालों से हथकरघा भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा है।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर एक अंग्रेजी अखबार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का लिखा लेख शेयर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री सिंह ने अपने लेख में हथकरघा को भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकतों में से एक बताया और देश की समृद्धि और विविध क्षेत्रीय कपड़ा परंपराओं पर प्रकाश डाला है। कपड़ा मंत्री ने भारत के युवाओं से अपील की है कि वे हथकरघा क्षेत्र के अगले अध्याय का आकार देने और बुनकरों की आजीविका को मजबूत करने के लिए विरासत और तकनीक, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को एक साथ लेकर आए। खेल जगत में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका के ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। 20 साल के प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जोवो खिर सिंदारोव के साथ दूसरे आखिरी राउंड में ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Apugapak. Parliament has passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Prime Minister Narendra Modi today met various members of parliament who have newly joined the NDA over breakfast at his residence. These include NCPI and Shiv Sena. Talking to reporters at parliament premises after the meeting, Shiv Sena MP Jyoti Savitri Nagnath Valkmare said the Prime Minister expressed concern over repeated disruptions in parliament. She said the Prime Minister observed that frequent disruptions prevent newly elected and talented MPs from putting forward their views in the House. Union Minister Sanjay Seth has said that the Jharkhand government had not taken adequate steps to address the students' concerns despite the prolonged agitation. Talking to the media at Parliament premises, Seth said Rahul Gandhi responded to the issue through a video message only after the students' protest had continued for over 2 weeks. BJP MP Nishikant Dubey also demanded a transparent inquiry into the alleged irregularities in recruitment conducted by the GPSC and the JSSC. India and China engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control during the 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Borders Affairs in New Delhi yesterday. The External Affairs Ministry said in a statement that both sides had held detailed exchanges on issues related to boundary delimitation, border management, mechanism building and transporter

0: 아침 만 dese puina ta na da zo da ho sap sha sanam sim ga sha de chuna ta ut ne so me nang 15 ho sin ta tun ja ta chere map ti me nang map ger ka phap ni no bor i ja bota zo agas ne che ke ga brang zin ta po ko tu sin ne ta tun ja ka ye ga chere ma chi na tan kyu no nam na da ji ko ta nang ba ni shu la
1: alas la tu chi chi tes dile ne ji yu mi ma la yong sa sha ajadi ka amrit mahotsav ni ya ta tum sum mu to de ga yum द शोंगसिया मारम तुमदे दिशोंया अजिक आजदी अमृत महोत्सव नेगा हर घर तिरंगा नेक मदोदी सेलिब्रेशन यादु दचिंग मदोदी का दांशुम तर सुमचे मंडी का लान चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैन नेगा अजिक गदा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट संपन योंजा डीसी बा योंजा मदोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग दि रसुम एच मीटिंग नेगा प्रोग्राम योर योर मदोदी निगुनम तवांग डिस्ट्रिक्ट नेगा हिने तांग मदोदी का तर ग्रो चे जिक रेंजिन लीडर सर एडीसी सर चेयरमैन या जिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग दिन यू ओ इट्स मीटिंग या जिक नरे प्रोग्राम योर टी डिसाइड यू नो द इर मिमालाई ना शंग प्रोग्राम जो अजन अतन टाउन डिस्ट्रिक्ट ने गा सेजिन यू नो नम सलुदी शिदोंग ती नादा जे द तर दु मुदु थीगा तिरंगा यात्रा न्यू मुद नादा जे गा तंग तिरंगा खिम खिम जे योंग्ज शोर गुसु दी जिक शोंसु ये नंग नम जे इन मुद याकुल जिक द नो तरीका खास दिन जे इम जे ने जिक नोटरिंग मोदो थिका दिक क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 मोदो थिका शुरू यो नम ओ एजे चिक अंग्रेज भारत छोरो निया ओ एज मोदो थिका जिक नोटरिक का न्यूज सी ए नोटरिक थोर 17 तारिक मोदो थिका हर घर तिरंगा इट डेट फिक्स यो नम उत तम चिंग मोदो थिका एजे चिक नरे ज तवांग डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर का प्रोग्राम सीजन यो नो निना तर चिंग ने जे तिरंगा यात्रा निया बुद्ध पार्क थोर ऑल मार्केट नेहरू मार्केट या अजिक वार मेमोरियल अमा ओंगिया जिक संपन्न गोदु दिया है अमा जिक मास सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम ये ओ इच जिक अजे जिक गदान छचंग बुचनांग हिमबुर जिक अमा इंडियन आर्मी हिमबुर योंगजा दुम या जिक अमा जिक प्रोग्राम दिनि गुनो जिसे दु मोदु थिका
0: यस
1: अजिक शुजे दे त तर जिक सिंग मोदु थिका जिक तिरंगा बाइक नि साइकिल बाइक रैली नि या इच जिक गदान छामलिंग सुर दे त वार मेमोरियल समथिंग गुनो जे जिक साइकिल रैली का पार्टिसिपेंट याकन बाग जिक नदा तमा साइकिल एसोसिएशन नेति नंबर बेरबक्सी याया जिक बाइक रैली का जिक नदा जा शो प्रिंजिनर व्यक्तिनी निनिमो तो थी का जिक बाइक रैली होम बिग लीडरशिप याया जिक बिग टीम बाग जिक नरे रिक्वेस्ट होनो जि बेरबक्सी ओमा हो या जिक इंडियन आर्मी वार मेमोरियल मो तो थी का अमा संपन्न थी निगुनो अजिक शुक दे तब स्कूल स्कूल जे नदा ओजक दर्जीखंड गवर्नमेंट कॉलेज नंबर तब PM Shri Kendriya Vidyalaya Tawangnam, Ajik PM Shri JNV Tawangnam, the Echengotu Thika Ajik Exhibition on Partition of Horror Remembrance Day, Ajik Ud Program Nikyotan Ziyangyana, Pakistani India ne Partition Yehuja Ajik, Mi Yor Motu Thijik, Munujamuya Yornam, Koduk Burasuya Yornam, Ajik Si Ajik 14 Jay, Marbaksa Ajik Program Dinyugunam, Ajik De Speech Ning Itbak, School School Jay, Betamak Celebration Yak, Ajik Manbrat Motu Thijik, Minithi Motu Thijik, Yongza Nyangan Zong Yajik, 14 का जिक उत पार्टिशन हॉरर रिमेंबरेंस डे मनाई का योंजा स्कूल का प्रोग्राम दिया गनी आय प्रोग्राम दिनी गुनो अजिक ते तब गतांग बजट सेक्रेटरी बजट ब्लिंग ओति नम तवा ओल मार्केट न्यू मार्केट नेहरू मार्केट डाउनटाउन मार्केट बजट ब्लिंग ओति दिनी बेर लाइन ब्लिकाशा सेक्रेटरी ब्लिकाशा नरबक्स रिक्वेस्ट दियो कु जिक एजे गामांग दि लो ट्राइकलर लो मोदरी या एजे योंजा बजट ना योंजा तिरंगा फानशोर गामांग ओतु दि हर घर तिरंगा रंग भी युक्त है रेलिक से उन्होंने जी इडिया कुल जिक बजे से किरी नांसे है बिरबास या बिर नहीं होया नांते ने अजिक ते तब स्कूल स्कूल का जिक अरे ट्राइकलर रंगोली आर्ट्स कंपटीशन हो इच ऑनलाइन गोतो दिए बुर जी ऑनलाइन गोतो दी या एक जिक योंजा पुछना पार्टिसिपेट या मनो मचे उन गोतो प्रोग्राम दिए गुनो ला
0: yes.
1: उच जी तर्चिंग नीचे नहीं गुनो ट्राइकलर रंगोली आर्ट्स कंपटीशन इच गतंग तो स्कूल नहीं नम पीएम श्री के वी तवांग ने पीएम श्री जैन वी तवांग वो इस स्कूल में का जिक रंगोली आर्ट कंपटीशन में तो देनी गुनो इस कर्चिंग ने चेनी गुनो ला
0: लेस दात ओ तो दागो सबसे मार ड्यूटी थे का थी नंग तारिक तो उठोल को चुए था चिंगे चिरी चित से मनु या इजिक तारिक चिंगे जैसे नो नम चिक्सुम जैसे नो नम चिबले जैसे नो नम इजिक और मार रिंबे याद नंग इजा बोता तो डिप्रो सब इस सिटी केशो याद मार नंग बे हर घर तिरंगा न्यो तो दात दागो सबे नंग बोले आजादी का अमृत महोत्सव शुंगसी में नंगो चुए था ताने लेतो अमृत सुन गोतो देखे में बोलनी उजुक नेगा या से दा उत में नंग हर घर तिरंगा नियो चीत ये दांग दांग किम किम का दा गेदर शोर गोतो गोतो देनी में ओरे इचा बोता तारिक दुगु थोर गोतो या दा तारिक चीनी सक्चे किम किम का गेदर शोर गोतो ये ना गेदर गाय गांग दांग ओचो शुंग शोगाक मदा हिक्सांग शोगाक

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुखा। कार्यक्रम जरुखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरुखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे डीसी ऑफिस तवंग की श्रीमती सिटिम जंगमू और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। इसके बाद आप सुन सकेंगे थुपतिन छोलिंग बालिका विद्यालय हो के कुमारी सुनम ड्रेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शरो की 5वीं कक्षा की छात्रा जम्बे ड्रामा से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा मन्युल तावंग। शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार एआर रहमान द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म लगान से आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में गीत, फिल्म जोधा अकबर से एआर रहमान की आवाज में गीत, फिल्म जाने तू या जाने ना से अनुपमा देशपांडे बेनी दयाल सतीश चक्रवर्ती नरेश अय्यर दर्शना तन्वी श्वेता की आवाज में गीत, फिल्म हाईवे से एआर रहमान की आवाज में गीत, फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में गीत, फिल्म रावण से कार्तिक की आवाज में गीत और फिल्म नायक से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उदित नारायण अलका याग्निक सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाश

20, दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुने हमारे केंद्र से कल यानी 8 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे चंद हिंदी भक्ति गीत। दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे अरुण जमातिया, जासवा हालिम, प्रियंका और साथियों की आवाज में चंद कॉकब्रोक आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग की 12वीं कक्षा की छात्रा छोरतन पेमा से तवंग में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर चंद शब्द। दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म जब हैरी मेट सेजल से सुनिधि चौहान और शाहिद मालिया की आवाज में गीत, फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से श्रेय घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में गीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से श्रेय घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में गीत और फिल्म हीना से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म ऊंचाई से नकाश अजीज की आवाज में गीत, फिल्म ब्रह्मास्त्र से तुषार जोशी और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत, फिल्म हीरो पंती से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म रईस से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में गीत, फिल्म जब वी मेट से शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में गीत, फिल्म मुन्ना माइकल्स से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म बागी से मीट ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत, फिल्म एक विलेन से अंकित तिवारी की आवाज में गीत, फिल्म शहजादा से शाश्वत सिंह और शलमली खोलगरी की आवाज में गीत और फिल्म गजनी से जावेद अली और सोनू निगम की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे पंडित डीके दातर से वायलिन वादन। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथर कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री लोपसंग नोरबू से, 5:35 पर आप सुन सकेंगे ग्यांगर बस्ती के श्री त्रिंग टशी सिंह और साथियों से मोनपा लोकगीत और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम के अंतर्गत लम्मा मेथो टशी और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आवाज जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म जोधा अकबर से पहले साज, उसी साज पर जावेद अली की आवाज में गीत और दूसरा धुन आप सुन सकेंगे फिल्म याराना से और उसी धुन पर आप सुन सकेंगे किशोर कुमार की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत ए आर रहमान की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे
News@9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
0: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और

0: Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi tomorrow. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students and 587 PhD scholars. Rains slashed several parts of North and Northwest India today. A yellow alert for moderate to heavy rainfall has been issued for Delhi today. Rainfall is also expected to continue over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand till the 12th of this month. In the south, red alert indicating extremely heavy rainfall has been issued for four northern districts of Kerala. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शरो की पांचवी कक्षा की छात्रा चंबे ड्रेमा से एक कविता। कविता का शीर्षक है मन्युल तवंग।
2: कैसी मिले मोह में चंबे ड्रेमा ये जिंदा लेंगे गाले तू मुकलचा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अविश्व विद्यालय शरो इन देश में नेताजी इन से तीजी इन मोहिंदे

0: अभी आपने सुना नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय शरोग की पांचवी कक्षा की छात्रा जाम्बी ड्रामा से एक कविता। कविता का शीर्षक था मन्युल तवांग। इसके साथ आज का कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे संगीतकार एआर रहमान द्वारा संगीतबद्ध चंद हिंदी फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लगान से आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

अभी आपने सुना एआर रहमान की आवाज में फिल्म हाईवे से गीत गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीता एआर रहमान का। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार एआर रहमान द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन

सकेंगे। फिल्म जाने तो या जाने ना से अनुपमा देशपांडे, बेनी दयाल, सतीश चक्रवर्ती, नरेश अय्यर, दर्शना तन्वीश और श्वेता भार्गवी की आवाज में। शब्द रचना है अब्बास टायर वाला का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में ये गीत गीतकार थे गुलजार व संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार एआर रहमान द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्म गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म नायक से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है एआर रहमान ने।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल है। ये पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार तथा भारत की हथकरघा परंपराओं के संरक्षण में उनके योगदान के लिए प्रदान किए गए। समारोह के दौरान देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनकाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों तथा भारत के हथकरघा क्षेत्र के जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया। एक वीडियो संदेश में साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उन्होंने लोगों से अपने हाथों से कपड़ा तैयार करने वाले गरीब बुनकर परिवारों और कारीगरों का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए इन छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर बुनकर परिवारों को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, उसका वीडियो बनाकर देश और दुनिया के साथ साझा करने की भी अपील की है, ताकि भारतीय कारीगरों की कला और शिल्प कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के सशक्त बनाने तथा बुनकरों एवं कारीगरों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। ईटानगर स्थित दोर्जी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक बुनाई विरासत राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इसे निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बुनकरों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई पहलों की सराहना की। इस अवसर पर वस्त्र एवं हस्तशिल्प राज्य मंत्री ज्ञातो दुकाम तथा मंत्री के सलाहकार डॉ. मोहेश चाय भी उपस्थित रहे। नामसाई जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव तथा नामसाई जिले के रोल ऑब्जर्वेट दोले कामदुक ने की। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से किया जाता है और किया जाएगा तथा भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाए। बैठक में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी लोपसांग शेरिंग, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ईटानगर कैपिटल रीजन ICR जिला प्रशासन कल शाम 8 बजे से 9 बजे तक ईटानगर स्थित देरानाथम गवर्नमेंट कॉलेज में शहरी व्यापी आपदा तैयारी अभ्यास के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 8 बजे से एयर रेड सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद ICR में रात 8:15 तक 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेगा। नागरिकों से सभी लाइट्स बंद रखने, घरों के अंदर रहने, नहीं घबराने तथा जिला प्रशासन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों का पूरा सहयोग करने की अपील की गई है। अभ्यास के दौरान यातायात संबंधी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आम जनता से पुलिस, सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों तथा मॉक ड्रिल में तैनात अन्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह जारी की गई है। और अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने रजत पदक तथा आदि नातुंग ने कांस्य पदक जीतकर प्रतिष्ठित बातुमी ओपन अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता

0: The mock drill. SBI, SC, ST Employees Welfare Association, State Bank of India, in collaboration with Apatani Interdisciplinary Research Society, conducted an awareness program on career in the banking sector, especially in the State Bank of India at JN State Museum, Itanagar, today. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्त गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत। फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाज में। शब्द रचना समीर के, संगीत है अनु मलिक का।

फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के सिगी के साथ कार्यक्रम क्वामे तराने यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं और प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म आरजू से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है हसरत जयपुरी के, संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है वारिंग घेरा पंजाब से आप है मिंटू थॉमस पिंक की लवली और आरती अरोरा, और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म प्रेम पर्वत से लता मंगेशकर की आवाज में। शतरचनाएं जहानिसार अख्तर के व संगीत है जयदेव वर्मा का। इस गीत की हमें फरमाइश की है डेर पठान गुजरात से। आप है धीरज वीर राबड़ी।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म सदमा से। शब्द रचना है गुलजार की व संगीत है लैया राजा का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है मुजफ्फरपुर बिहार से आप है आर्यन राज रोहित राज और पीयूष कुमार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म ड्रीम गर्ल्स से मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है गुलजार की व संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से आप है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्राकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और जनकपुरी सहारनपुर से आप है जॉन डिकास्ट्रो, पर्ल डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो और विलिस डिकास्ट्रो।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर लिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म रंग से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है शेव गांव से आप है श्रीराम गोंदाली और उषा गोंदाली, और कोपार गांव से आप है सुरेश मलोड़े और वर्षा मलोड़े।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि की ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने जीता रजत पदक। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। AHF जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। भारोत्तोलन से, जहां तितली मांझी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम पदक किया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में परिश्मिता गोगोई 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथे स्थान पर रही। परिश्मिता स्नैच में 65 और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन ही उठा सकी। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी और उम्मीद करें कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतें। और अब रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना केची को हराया। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट।
1: विश्व में 50वें नंबर की खिलाड़ी अश्मिता ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से पराजित किया। हिना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अश्मिता ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी की कुछ गलतियों से जापान की खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। अश्मिता ने हालांकि कड़ी चुनौती पेश की, उन्होंने 12-12 और फिर 15-15 पर स्कोर बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने 17-15 और 18-16 से बढ़त भी बना ली। हालांकि हिना ने यहां एक बार फिर वापसी की और पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने जोरदार वापसी की, स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद उन्होंने लगातार 6 अंक जीतकर 13-7 की बढ़त बना ली। हालांकि हिना ने अंतर को कम करके 14-16 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा और अगले 6 में से 5 अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम भी कुछ इसी तरह चला, जिसमें अश्मिता ने 9-3 की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बरकरार रखी। उन्होंने इसे 18-11 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हिना ने फिर जोरदार वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर अंतर को 17-18 तक कम कर दिया। अश्मिता ने अंतिम क्षणों में अपना संयम बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। उधर रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और अपनी ही देश की तन्वी शर्मा को 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से पराजित किया। तन्वी के खिलाफ ये उनकी चौथी जीत है। पहले गेम में रक्षिता ने 13-8 की बढ़त बनाई, लेकिन तन्वी ने शानदार वापसी की और अगले 9 में से 8 अंक हासिल किए और स्कोर को 8-13 से 16-14 तक ले जाने के बाद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे और तीसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम के आखिर में तन्वी की 3 गलतियां उन्हें भारी पड़ गईं। रक्षिता ने इसका फायदा उठाया और तीसरा गेम और मैच अपने

0: नाम कर लिया। हालांकि कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया के मान वेई चोंग और सो वोई यिक से 7-21, 8-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: आज का मुकाबला श्रोताओं काफी दिलचस्प रहा। तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज रक्षिता से हारकर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाल ही में उन्होंने ताइपे ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रतियोगिता में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन रक्षिता ने

0: तमाम इंटरनेशनल चैलेंजेस में भी उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। और अगर उनकी प्रतिद्वंदी की बात की जाए जो कि अश्मिता चालिहा है, जिन्होंने 2018 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल चैलेंजर्स में भी महिला सिंगल्स में उन्होंने जीत दर्ज की और 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंजर जो कि 2023 में हुआ था उसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी जीत दर्ज करता है और फाइनल में अपनी जगह बनाता है। और अब बात करते हैं शह और मात का खेल शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदन ने एक राउंड बाकी रहते ही जावोखीर सिंदारोव को हराया। आइए सुनते हैं खिताबी मुकाबले पर ये रिपोर्ट।
1: प्रज्ञान आनंद और उज़्बेकिस्तान की जावोखीर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 अंक हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सिंदारोव ने 22 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया जबकि वेस्ली सो 20.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवोन एरोनियन चौथे स्थान पर रहे और फैबियानो करुआना, लिनियर डोमिंगवेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। इस जीत से प्रज्ञान आनंद सिंह फील्ड कप के पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञान आनंद ने 5 दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 पॉइंट के अंतर से उपविजेता रहे। मैच के बाद प्रज्ञान आनंद ने कहा कि इस प्रतियोगिता से मेरे गेम में सुधार हुआ है।
2: Feels great. I mean, you see the score, it's like 1.5 round to spare, everything looks smooth, but wasn't the case. It was crazy. I mean, kudos to Javakir, he kept the fight till the end. Yeah, he was also fighting very well. So, I mean, just basically what I said yesterday, not to do anything stupid myself, but then I managed to do it against Avander in the second game where I was just, you know, I had so much control and I was just winning, but and then I managed to basically not take the draw and then I lost the game, which is exactly what I wanted to avoid. I mean, even though I lost that game, I felt my game could it was okay. Yeah, I was just trying to calm myself and I also wanted to like win it separately. I wanted to win the rapid and blitz separately, which I think I managed. So that's also good.
1: Tournament में 10 बेहतरीन ग्रैंड मास्टर शामिल हुए थे। 5 दिन के खेल में खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए जिनमें सिंगफील्ड कप और GCT ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये साल प्रज्ञानानंद के लिए बेहतरीन रहा है। इस वर्ष ही जून में उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। अमेरिका के यूजीन में आयोजित एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर चैंपियनशिप के अगले दौर में क्वालिफाई किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: 19 वर्षीय अशफाक पहले दौर की हीट 5 वर्ग में 45.81 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डी लियोन 45.63 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। अशफाक ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान अशफाक ने इस वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को भी बेहतर किया। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में 18 वर्षीय कम्बोज 53.24 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। चीन की सू यिक्सन पहले और अमेरिका की जैसलीन मैसी दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग राउंड में 2.14 मीटर की कूद लगाकर 5वां और कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: अश्रुदा, आपको बता दें कि तनु चौधरी अपने हीट में 5वें और कुल मिलाकर 33वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रही। वहीं अमित कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 8वां और अंतिम स्थान हासिल किया। पी रोशन और धनुष राज दोनों ही पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे।

0: और अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने AHF जूनियर एशिया कप के लिए आज भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जबकि 2 वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
1: डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया, जहां टीम की भिड़त मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का अनुभव और अहम सीख मिली, जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और AHF जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी। टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर-21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयस ने कहा कि यह टूर्नामेंट एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है, जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक साथ लाती है। ये प्रतियोगिता भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और देश के खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए खिलाड़ियों के हित और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डोपिंग के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने भारतीय खेलों से इस खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सुविधादाताओं और उपयोगकर्ताओं सहित पूरी श्रृंखला से एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। खेल मंत्री ने भारत के स्वदेशी कोचिंग तंत्र को मजबूत करने और विदेशी प्रशिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुपालन, सुशासन प्रथाओं और एशियाई खेल 2026, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। और अब बात गोल्फ पर। स्नेहा सिंह ने तमिलनाडु के होसुर में हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम किया। स्नेहा ने 6 शॉट की बढ़त गंवाने के बाद प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराया। स्नेहा ने दूसरे दिन 10 अंडर का कार्ड खेला और अंतिम दिन 5 ओवर 76 का कार्ड खेला। अब कार्यक्रम में बात उस खिलाड़ी की जिसने अपने स्विंग गेंदबाजी से विश्व के कई बल्लेबाजों को छकाया है। धारदार गेंदबाज और भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दीपक चहर का आज जन्मदिन है। 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले चहर ने 13 एक दिवसीय में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं 25 T20 में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। चहर ने 2016 से अब तक IPL में 96 विकेट अपने नाम किए। दीपक ने पुरुष T20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।
2: So much riding on this ball. It's a hat-trick ball. He gets a wicket with the best figures ever in T20 cricket. And he does! It's a hat-trick. It's the best figures ever in T20 internationals. But Deepak Chahar has finished 6 for 7. The first Indian to take a hat-trick, he set all kinds of landmarks. Well done, Deepak Chahar.
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल।

0: इंदौर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

0: सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौतों पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फॉन्ड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने

0: और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरनास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
4: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters.

ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और अच्युत बर्मन और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ आपकी उद्घोषिका टाशी छोटरुंग दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।